0: इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, आप सिलेक्ट करोगे ब्रैकेट क्लोज।
1: अगर आप अभी भी ऐसे ही सम, एवरेज, फिल्टर और ये सब मैनुअल फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो तो आपके लिए एक वार्निंग है। आज इंडिया में 90% प्रोफेशनल लोग एक्सेल यूज करते हैं और आज भी वो एक्सेल में सम, एवरेज और वही दो चार फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं। ऐसे ही लोग का जब इंक्रीमेंट की बारी आती है ना तो बॉस पता है क्या बोलता है, ये साल भी इंक्रीमेंट कम ही होगा। क्योंकि कंपनीज को अब एक्सेल यूज करने वाले लोग नहीं चाहिए, एक्सेल और एआई को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले लोग चाहिए। आपको मैं एक जन से मिलवाता हूँ। मिलिए, मेरे एक स्टूडेंट है, इन्होंने 17 लाख रुपए का पैकेज क्रैक किया। वही जॉब, वही बॉस, सब कुछ सेम था, डिफरेंस एक्सपीरियंस का नहीं था, डिफरेंस था स्किल का। और यही स्किल सिखाने आ रहा हूं मैं ये संडे लाइव वर्कशॉप के अंदर, जहां पे आपको डैशबोर्ड, पिवट रिपोर्ट्स, हर एक चीज आपको एआई से लर्न करवाता हूं, क्लाउड से लर्न करवाता हूं। इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 2999 है। अगर आप आज रजिस्टर करते हो तो आपको मिलता है सिर्फ ₹199 में, साथ ही साथ 15,000 के बोनसेस फ्री। जो लोग अपग्रेड नहीं करेंगे ना उनका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आज ट्रेनिंग ले रहा है हमारे पास। तो आप किस साइड रहना चाहते हो, मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर।

0: developed India. We know that the true holistic developed India is the one where rural India and urban India advance together, where progress is not measured by what we build, but by how many lives we are able to transform. Rural India is the spirit of India. With nearly two-thirds of India's population living in rural areas, the transformation of India is not complete without the transformation of rural India. It is this national aspiration that inspired Delhi Technological University to ask a fundamental question. Can we take the power of engineering beyond the boundaries of our classrooms and laboratories and place it where real challenges exist? Can our villages become the experiential grounds for our engineers? At DTU, we believed the answer was this. And from this belief emerged a new initiative.
1: बाजार में एक नया कॉन्टूर पिलो आया है। ये मेडिकल ग्रेड एयरवे सपोर्ट देता है जो आपकी गर्दन और रीढ़ को परफेक्ट तरीके से सीधा रखता है। सच कहें तो ये चीज कमाल की है। ये खुद ब खुद एडजस्ट होकर हर पोजीशन में तुरंत परफेक्ट सपोर्ट देता है। चाहे आप करवट लेकर सोएं, पीठ के बल या पेट के बल, आपको तकिया ठीक करने या फुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और यही असली वजह है कि इससे सांस लेना इतना आसान हो जाता है। ज्यादातर तकिए सिर को बहुत नीचे धंसा देते हैं या बहुत आगे धकेल देते हैं, जिससे एयरवे संकरा हो जाता है और फेफड़ों को ऑक्सीजन पाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी कंपनियां सालों से लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, हर साल नए तकिए खरीदवाकर पैसे वसूल रही हैं, गुसोड़ी हैं। लेकिन हर चीज की एक हद होती है ना? लेकिन ये चीज पूरी गेम ही बदल देती है। इसके सामने बाकी सारे तकिए बेकार लगते हैं। इसका फोम आपकी गर्दन और सिर को बिल्कुल सही पोजीशन में रखता है ताकि एयरवे पूरी तरह खुला रहे। जैसे ही आप लेटेंगे फर्क तुरंत महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे रात भर बिना मेहनत के आसानी से सांस ले पा रहे हों। बस इसे देखिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। इसकी सबसे खास बात है इसका पेटेंटेड सपोर्ट विंग्स और शोल्डर आर्च डिजाइन। यही इसे आम स्टोर में मिलने वाले तकियों से कई गुना बेहतर बनाता है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी पहले मेडिकल क्लिनिक और फिजिकल थेरेपी सेंटर्स में पोस्चर सुधारने के लिए बनाई गई थी। बाद में एक स्लीप इंजीनियर ने इसे घर में रोजाना इस्तेमाल के लिए दोबारा डिजाइन किया, वो भी सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ। जब उसने इसे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की तो बड़ी कंपनियों ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा अब मैं इसे इतना बेहतर बनाऊंगा कि कोई मुझे रोक ही न सके। वो इंजीनियरिंग का जीनियस था और उसने ऐसा तकिया बना दिया जो क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाले मॉडल से भी ज्यादा असरदार निकला, और अभी ये आम लोगों के लिए उपलब्ध है। अमेरिका में यही एकमात्र ब्रांड है जिसके पास ऑफिशियल IGR सर्टिफिकेशन है। इसका नाम है डेरेला एर्गो। ये अब तक का सबसे एडवांस्ड स्लीप अलाइनमेंट पिलो है। जरा इसे देखिए, ये हजारों रुपए के ऑर्थोपेडिक पिलो को भी आसानी से मात दे देता है। ये सर्टिफाइड मेमोरी फोम से बना है, सांस लेने योग्य है, तापमान नियंत्रित रखता है और खास तौर पर एयरवे खोलने और खर्राटे कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप जैसे चाहें वैसे सोएं, आपकी रीढ़ को पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। साथ ही इसमें प्रेशर रिलीफ गैप्स और कूलिंग कवर भी है। और सबसे बड़ी बात, इसका निर्माता चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे बिना महंगे रिटेल प्राइस के इस्तेमाल कर सकें। आपको ये अमेज़न या महंगे स्टोर्स में नहीं मिलेगा जहां कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। आज डेरेला अर्गो पर 70% की छूट चल रही है, चलिए ही है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो जल्दी करना होगा। ये पहले ही 9 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है और 380,000 से ज्यादा पिलो बिक चुके हैं। एक अपने लिए लें और कुछ गिफ्ट देने के लिए भी ले लें। लिंक पर क्लिक करें, छूट का फायदा उठाएं और अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन नींद के लिए तैयार हो जाएं।

0: You've got a great idea. GoDaddy has the perfect domain name to go with it. It only takes a few minutes to register one, with over 500 extensions to choose from. Plus, every domain comes with the AI-powered experience Aero, which will create essentials like a logo and landing page for you in minutes. With 80 million names sold, GoDaddy is the world's number one domain registrar. Take your idea online today.
1: इस सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज की एंकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिन्होंने इस कार्यक्रम में भी एक एंकर की भूमिका निभाते हुए इसको सक्सेसफुल बनाने में कंसीव करने में बहुत मेहनत की है और बहुत परिश्रम के साथ और बहुत बड़े विजन के साथ जो विजन सरकार लेके चल रही थी उसे इम्प्लीमेंट करने के विजन के साथ इसे काम किए ऐसे डॉक्टर प्रतीक शर्मा जी यहाँ उपस्थित एडिशनल डायरेक्टर क्षमा चाहता हूँ श्री प्रोफेसर केसी तिवारी जिनको आपने सुना जिन्होंने इसके लिए प्रेजेंटेशन दिया वो वाइस चांसलर को इस कार्यक्रम की सफलता की बधाई देते के जिम्मेदार बताते और वाइस चांसलर इन्हें बताते हैं और तीसरे प्रोफेसर उस कोने पे बिठाया इन्होंने ये सब एक दूसरे को कहते हैं मगर एक टीम नथिंग सक्सीड्स विदाउट ए टीम प्रोफेसर गिरीश कुमार एंड यहाँ उपस्थित सभी वाइस चांसलर्स उनकी भी टीम्स यहाँ हैं और वे भी इसको सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं और अवनीश कुमार डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली सरकार श्री नितिन जिंदल एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन दिल्ली सरकार और सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने इस कार्यक्रम के ज्यूरी के सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में यहाँ खुद उपस्थित भी हुए हैं मैं ज्यूरी का परिचय आपसे दूंगा जो खुद एक सफल स्टार्टअप शुरू करने से लेकर एक यूनिकॉर्न तक पहुंचने का सफर जिन्होंने खुद किया है जिनसे इन बच्चों को जो यहाँ इस इनोवेशन चैलेंज में सफल होंगे जिनसे मेंटरशिप भी मिल सकती है मार्गदर्शन भी मिल सकता है इंस्पिरेशन भी मिलेगी ऐसे विराज बहल जी जो फाउंडर है वीबा सॉसेस के मैं चाहता हूं कि ऑडिटोरियम उनके स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजाएं और यहां उपस्थित कालका जी से मेंबर नगर निगम की सदस्य पहले चेयरमैन थी आप सेंट्रल जोन की और भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी योगिता सिंह जी और इस पूरे प्रोग्राम को मेहनत के साथ इंप्लीमेंट करने में मेरा सहयोग दे रहे छावला से निगम पार्षद और एक बहुत ही डैशिंग युवा नेता जो इनोवेशन और इंक्यूबेशन के काम में बहुत रुचि लेते हैं आप हैरान होंगे एक निगम पार्षद होने के बाद भी कोई निगम पार्षद होना छोटी बात नहीं है मगर वो मुझसे कोई सड़क या कोई नाली या कोई पार्क बनाने के लिए नहीं कहते हैं वो कहते हैं मुझसे कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रही है उसका यूईआर के पास मेरा गांव है मेरे गांव में एक दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलवा दीजिए शशि यादव ऐसे निगम पार्षद है और यहां उपस्थित सभी इनोवेटर्स इंडस्ट्री लीडर्स प्रोफेसर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स के इंचार्ज मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं आज डीटीयू में आकर एक चीज बहुत क्लियरली फील हो रही है जैसा विराज ने भी कहा आइडियाज की कमी भारत में नहीं है कंट्री इज इन सेफ हैंड्स द यूथ ऑफ द कंट्री हैज टैलेंट कमी केवल थी तो सिर्फ उन आइडियाज को अपॉर्चुनिटी देने की कमी थी और आज का सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज उसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने की एक कोशिश है लेकिन मैं इसे केवल कंपटीशन नहीं मानता हूं यह माइंडसेट का चैलेंज है एक ऐसे माइंडसेट जो कहता है प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम समझो और सॉल्यूशन बनाओ, और सॉल्यूशन को सोसाइटी तक पहुंचाओ। यही है सेवा फर्स्ट। सेवा का मतलब क्या है? आज हम सेवा की बात करते हैं तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पब्लिक लाइफ का एक अप्रोच याद आती है, प्रधान सेवक। उन्होंने ही नाम दिया प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक। 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी संभालने से 25 वर्षों तक कंटिन्यूअसली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर गवर्नेंस की जर्नी को चलाते हुए लगातार वे दिखाई देते हैं। पीपल फर्स्ट गवर्नेंस, टेक एनेबल्ड गवर्नेंस, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का यूज, गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज, और गवर्नेंस को पीपल पार्टिसिपेशन से जोड़ने का काम। मैं मानता हूं सेवा का मतलब केवल किसी की मदद करना नहीं है, सेवा का मतलब है प्रॉब्लम को समझना और उसके आसपास सॉल्यूशन को ढूंढना। यही प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का एक तरीका हम सबके सामने एग्जाम्पल के रूप में रखा है। आपके आसपास कोई फार्मर परेशान है, डोंट जस्ट नोटिस इट, सॉल्व इट। और मैं बधाई देता हूं डीटीयू ने जो ये इन द एकेडमिक ईयर ऑफ 27-28 जो गांव में जाकर इंजीनियरिंग के हर डिसिप्लिन के विद्यार्थी को कोई कोई प्रॉब्लम ढूंढने का और उसका सॉल्यूशन बनाने का जो पीड़ा उठाया है, मैं इसके लिए डीटीयू को बधाई देना चाहता हूं। किसी गवर्नमेंट स्कूल में लर्निंग की प्रॉब्लम है, डोंट जस्ट डिस्कस इट, बिल्ड समथिंग। किसी विलेज में क्लीन एनर्जी का चैलेंज है, डोंट वेट फॉर समवन, आस्क व्हाई नॉट मी। यही सेवा फर्स्ट है, यही सेवा है। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक माइंडसेट चेंज है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन चुका है। थोड़ा पीछे जाकर देखिए, 2014 से पहले इंडिया में 500 से भी कम, आप लोग तो सब टेक्नोलॉजी के पढ़ाने वाले और टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले लोग हैं, इनोवेशन इंक्यूबेशन को अपने लैब्स में बल देने वाले, जन्म देने वाले, उसको मेंटर करने वाले लोग हैं। 2014 से पहले इंडिया में 500 से कम रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे, और आज इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इको स्टार्टअप इकोसिस्टम का हब है। और यह सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, यह माइंडसेट की कहानी है। एक जनरेशन जो पहले पूछती थी जॉब कहां मिलेगी, आज उसका एक बड़ा हिस्सा ये कहता है कि मैं जॉब क्रिएट कैसे करूंगा, मुझे इसका रास्ता बताइए। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे इनिशिएटिव्स ने एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए इकोसिस्टम को एक्सपैंड किया है। विराज जी जैसे एग्जाम्पल आज हमारे सामने हैं। बहुत बड़ा हिस्सा उनकी पर्सनल मेधा का, उनकी मेहनत का, उनके भाग्य का, उनके परिश्रम का, उनका रातों को जागने का, फेल होने पर गिरकर रोकर संभलने का, बहुत बड़ा हिस्सा उसका भी है। मगर ये भारत के माइंडसेट चेंज को दिखाने वाले नौजवान के रूप में मैं आज विराज जी को यहां देखता हूं। और आप सिर्फ स्टार्टअप बनाने के बारे में मत सोचिए, और आज ये चैलेंज भी है कि हम केवल स्टार्टअप बनाने के बारे में ना सोचें, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए सोचना है। स्टार्टअप तो बाद में बनेगा, पहले प्रॉब्लम समझिए। इंडिया के पास प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, हम इतना बड़ा देश है, हमारा तो उत्तर प्रदेश ही अमेरिका की आबादी से बड़ा है, बहुत बहुत देशों की आबादी से बड़ा है, वास्टनेस है। इंडिया के पास इसलिए प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, एग्रीकल्चर, वाटर, वेस्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मोबिलिटी, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल लाइवलीहुड, हर प्रॉब्लम के अंदर यह भी एक देखने का नजरिया। पुराने जमाने में कहा जाता था, जब मैं स्टूडेंट था तो बहुत सारे डिबेट्स में जब हम पार्टिसिपेट करते थे तो कहते थे, एग्जाम्पल देते थे, गिलास आधा खाली और आधा भरा। तो इसलिए आज कोई आप प्रॉब्लम देखें तो उसे केवल प्रॉब्लम की तरह देखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी छुपी हुई है, उसी प्रॉब्लम में एक पॉसिबिलिटी है। और स्काई रूट स्पेस इज ए क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस। हमारे यंग इनोवेटर्स सिर्फ फ्यूचर की कल्पना नहीं कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग इट इन सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज।

और जो ज्यूरी उसको देखेगी और उसको मेंटर करेगी, क्योंकि उन्हें अवसर मिलेगा ऐसे बड़े बड़े लोगों से मेंटर करने का। इसके लिए इन लोगों के मैंने वेरिड फील्ड्स बताए जिसमें ये सफल हुए हैं। हमारी ज्यूरी में जैसा मैंने बताया विराज बहल होंगे, वीबा सॉसेस के प्रमोटर हैं, फाउंडर हैं, और एक यूनिकॉर्न में कन्वर्ट किया इन्होंने एक छोटे से स्टार्टअप को। अनन्या बिरला आज जो देश में बहुत नामचीन एंटरप्रेन्योरशिप है और बहुत सारे एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रही हैं। आकाश गुप्ता फाउंडर जिप, आप जो छोटी सी स्कूटी पे देखते हैं बहुत सारे जो गिग वर्कर्स घूमते हैं, वो जिप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है, एक बड़ी संस्था को उन्होंने खड़ा किया है, नौजवान है। स्वाति भार्गव फाउंडर ऑफ द कैश करो, और पुनीत गुप्ता फाउंडर एस्ट्रोटॉक, ये हमारी ज्यूरी होगी इस पूरे इनोवेशन चैलेंज के लिए। लोगों को अवसर मिलेगा, युवा जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो सिलेक्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको अवसर मिलेगा ऐसे सफल एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने का, उनसे मार्गदर्शन लेने का, मोटिवेशन लेने का और मेंटरशिप प्राप्त करने का, और उन सबका एक्सपीरियंस इन यंग इनोवेटर्स के लिए क्लासरूम के बाहर की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज इनोवेशन का रियल टेस्ट सिर्फ यह नहीं है कि आइडिया कितना इंटरेस्टिंग है, रियल क्वेश्चन है क्या ये एक्चुअली काम करेगा, क्या ये अफोर्डेबल है, क्या ये स्केल हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या ये लोगों की जिंदगी में रियल डिफरेंस ला सकता है। आज इस चैलेंज का 2 करोड़ का प्राइस पूल है, लेकिन मैं चाहूंगा आप प्राइस मनी को डेस्टिनेशन ना समझें। प्राइस इज नॉट द फिनिश लाइन, इट इज द स्टार्टिंग लाइन। द चैलेंज इज इस चैलेंज में मेंटरशिप होगी, इंक्यूबेशन अपॉर्चुनिटीज होंगी, इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने होने की अपॉर्चुनिटी होगी, सिलेक्टेड इनोवेशंस को DTU और अदर इनोवेशन इकोसिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा, और सक्सेसफुल सॉल्यूशंस के लिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से सरकार की ओर से ये कह रहा हूं, सक्सेसफुल सॉल्यूशंस को फंडिंग, डिप्लॉयमेंट और स्केलिंग की तरफ ले जाने में सरकार हैंड होल्डिंग करेगी। बिकॉज इंडिया डजंट नीड आइडियाज दैट रिमेन ऑन पावर पॉइंट, इंडिया नीड आइडियाज दैट रीच ग्राउंड। 100 डेज, जी हां 100 डेज आइडिया से इंपैक्ट तक, और मुझे सेवा फर्स्ट की सबसे ब्यूटीफुल बात यही लगती है कि आइडिएशन पर रुकना नहीं है, आइडिया का प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप से टेस्टिंग, टेस्टिंग से वैलिडेशन, वैलिडेशन से डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट से इंपैक्ट। आज सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज पोर्टल लॉन्च हुआ है, नेशनल और लोकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लॉन्च हुए हैं, और RTCEP इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर रूरल इंडिया भी लॉन्च हुआ है। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है, इनोवेशन सिर्फ माइक्रो सिटीज के लिए नहीं है, मेट्रो सिटीज के लिए नहीं है, हमारे विलेजेस में भी इनोवेशन सेंटर्स बन सकते हैं, रूरल इंडिया भी टेक्नोलॉजी का क्रिएटर बन सकता है, और हमारी लोकल प्रॉब्लम्स से ग्लोबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अगले 100 दिन जब आप भी किसी प्रॉब्लम को देखें तो यह मत सोचिए कोई इसे सॉल्व करेगा, बस एक बार पूछिए व्हाई नॉट मी। रोड सेफ्टी की प्रॉब्लम है, व्हाई नॉट मी। फार्मर की प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, व्हाई नॉट मी। स्कूल एजुकेशन की प्रॉब्लम है, व्हाई नॉट मी। वेस्ट की प्रॉब्लम है, व्हाई नॉट मी। क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, व्हाई नॉट मी। बिकॉज नेशन मूव फॉरवर्ड व्हेन यंग पीपल स्टॉप सेइंग समवन शुड डू समथिंग एंड स्टार्ट सेइंग आई विल ट्राई। 2047 का विकसित भारत सिर्फ एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं हो सकता है, इट हैज टू बिकम ए पीपल्स मिशन। पीएम मोदी जी ने यूथ को विकसित भारत के लिए नेशन बिल्डिंग का मिशन के सेंटर में रखा है, और आज का सेवा फर्स्ट चैलेंज भी उसी विजन का प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म देना है। विकसित भारत, यहां उपस्थित प्राध्यापकों को मैं एड्रेस करता हूं, विकसित भारत

बाहर नहीं है, आपके क्लासरूम्स में है। ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए जो बच्चा आता है लगभग 18 वर्ष की उम्र में आपके पास फर्स्ट ईयर में आता है, विकसित भारत 2047 जब बनेगा तो उसकी आयु क्या होगी? मात्र 38 साल अपने कैरियर के पीक में होगा। और जो आज 12वीं का विद्यार्थी है, जो आज फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट का विद्यार्थी है, उसकी आयु होगी केवल 20 वर्ष। यही विकसित भारत है, यही विकसित भारत के निर्माता होंगे और यही विकसित भारत के सबसे बड़े लास्ट माइल पर उपयोगकर्ता होंगे। इनको मेंटर करके ही विकसित भारत बन सकता है अगले 20 वर्षों में। यही आपकी क्लासरूम में ही विकसित भारत को बनाने वाले

0: बनाने वाले नौजवान अपनी मेधा से जो इसे बनाएंगे, और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज हम सब अखबारों में देखते हैं, बहुत दफा फ्रस्ट्रेशन में अखबार पढ़ते पढ़ते फेंक देते हैं, कुछ नहीं हो सकता। आज मौका मिला है, सरकार खड़ी है पीछे। मैंने जो बार बार कहा अपने इनिशियल रिमार्क्स में कि माइंडसेट चेंज हुआ है, सरकार उसमें साथ खड़ी है युवाओं के, आप उसको मेंटर करिए, हमारे हमारे मेंटर्स, हमारे ज्यूरी के मेंबर्स उसको मेंटर करेंगे और उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर उस युवक को लाने के लिए उसको मोटिवेट करने का अवसर है कि तुम ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी देखते हुए आगे बढ़ने का काम आपको करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा जिस पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की बात की है, आज सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज उस पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में, जो लोग इस भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो लोग भारत के लिए कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं अक्सर कहता हूं, नॉट एवरीबॉडी हैज टू गो ऑन द बॉर्डर्स टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन एनिमीज, टू बी ए पैट्रियट और टू सर्व द कंट्री। वी कैन सर्व द कंट्री राइट हेयर इन आवर कैंपसेस, इन आवर लोकल एरियाज, इन आवर कम्युनिटीज, इन आवर ब्लॉक्स, इन आवर RWAs, बाय हेल्पिंग पीपल सॉल्व द बाय हेल्पिंग गवर्नमेंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू हु मे नॉट बी वॉन्टिंग टू गो टू द बॉर्डर, ज्वाइन द आर्मीज और एनीथिंग एल्स, टू सर्व द नेशन हेयर इन योर कैंपस, हेयर इन दिस दिल्ली, हेयर इन योर कम्युनिटी, हेयर इन योर ब्लॉक, यू हैव ए अपॉर्चुनिटी टू सर्व दिस कंट्री। सो ज्वाइन अस, ज्वाइन द सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 एंड इनोवेट एंड सर्व द कंट्री। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।
1: Thank you very much, Honorable Minister Sir, for your inspiring and encouraging words. Your address reinforces an important message for every young innovator present here today, that education reaches its highest purpose when knowledge is transformed into creativity, innovation, and service to society. May we express our gratitude with a huge round of applause. Every successful program is the result of a shared vision and a collective efforts of many individuals and teams working together. As we conclude the formal proceedings, it is now time to acknowledge all those who have contributed towards making the Seva First Rashtriya Youth Innovation Challenge 2026 possible. May I request Professor Rajeshwari Pandey, Dean Faculty Affairs, to come over to the stage and propose the vote of thanks.
2: Thank you. Thank you, Professor Yesha. मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इन पंक्तियों में उस संकल्प और सामर्थ्य का भाव निहित है जो किसी भी बड़े उद्देश्य को साकार करने की आधारशिला बनाता है। आज का यह कार्यक्रम इसी तरह के सामूहिक संकल्प का परिचायक है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करना ये मेरे लिए सम्मान की बात है। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य अतिथि, माननीय शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार के श्री आशीष सूद जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम के मूल भावना का श्रेय विशेषतया आपको जाता है सर, और विश्वविद्यालय इसके लिए आपका विशेष आभारी है। आपके संबोधन ने इस आयोजन में एक ऊर्जा का संचार किया है। इसके अलावा आज के विशिष्ट अतिथि श्री विराज बहल जी, मैं आपका हार्दिक आभार प्रस्तुत करती हूँ, और मैं यहाँ उपस्थित सभी युवा सदस्यों से की तरफ से आपको ये प्रॉमिस करना चाहती हूँ, आपने कहा था कि आप हार नहीं मानेंगे, तो मैं माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी के शब्दों में कहूंगी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो यहाँ जितने भी युवा विद्यार्थी उपस्थित हैं, मैंने उनके बिहाफ पर ये बात कही है, तो उनसे अनुरोध करूंगी कि इसका विशेष संज्ञान लें और उस हिसाब से काम करें। इसके बाद मैं हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके विचारों और सतत मार्गदर्शन ने आज इस विमर्श को विशेष रूप से समृद्ध किया है। इसके अलावा मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथियों का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा आपने इस तरह से हमारा प्रोत्साहन किया है, इसके लिए विशेष धन्यवाद।
3: So then, let me introduce Florian Schneider from Copenhagen. So please, Florian, it's yours.
4: Great. First, thanks so much, Ernst, for having me at this like amazing conference. Like, I'm very excited to be here. As part of this session on the predictive power of social preferences, I will talk about the question whether measures of social preferences predict behaviors with externalities. So, as all of you know, now there's many individual, environmental, and health behaviors that impose externalities on others. Think about flying, not sorting waste, not vaccinating. Now, these externalities are then central to many key societal challenges such as climate change and spread of diseases. In standard economic theory, we assume that people are selfish and do not take into account such externalities on others. But there's more recent theoretical work in behavioral economics that instead assumes that at least some people are motivated by pro-social motivations and care how their behaviors impact others, which can then sometimes lead to partial internalization of externalities. Now, some of these works then find that optimal policy design can depend on the degree as well as the heterogeneity of pro-social motivations in a population. Now, the empirical literature has found that there's indeed many people that are motivated by pro-social considerations, although there's also some selfish people. And this literature has very much focused on measuring and studying such social preferences in abstract environments, like with economic games. And so it's somewhat unclear whether such abstract measures of pro-social motivations then extend to field behaviors with externalities. And so today I will ask the question whether social preferences predict field behaviors with externalities. And there's a couple of reasons why it's unclear whether we should actually expect such a relationship. On the one side, these abstract measures of social preferences may not succeed in capturing the relevant pro-social motivations in the field. And on the other side, it could be that pro-social motivations simply do not matter in field settings. For example, it could be that other choice-relevant factors dominate any pro-social considerations. For example, people that fly the most may not be particularly selfish, but simply being people that enjoy traveling the most. Or more generally, many academics have been arguing that market contexts very generally erode any pro-social motivations, such that they do